0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, बुधवार 26 अगस्त को चीन से लगी नेपाल की सीमा पर हिमनद टूटने और भूस्खलन से आई विनाशकारी बाढ़ से भारी तबाही हुई है। अब तक 1290 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 4200 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। त्रिशूली ए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में 9 दिनों तक फंसे रहने के बाद आज 2 लोगों को जिंदा बचा लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता स्टेफान दुजारिक ने बताया कि अवरुद्ध सड़कों और राजमार्गों के कारण राहत व बचाव दलों के लिए सबसे अधिक प्रभावित इलाकों तक पहुंचना बेहद मुश्किल बना हुआ है। 65,000 लोगों को स्वच्छ पानी और साफ सफाई से जुड़ी आपात सहायता की जरूरत है। अब तक 10,000 से अधिक लोगों को बचाया गया है, जिनमें 252 विदेशी नागरिक शामिल हैं। इस आपदा का असर सीमा पार तिब्बत के इलाकों में भी पड़ा है। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से भारी तबाही हुई है। अधिकारियों के अनुसार चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में भी बाढ़ का असर हुआ है, जहां लगभग 560 लोग लापता बताए गए हैं। माना जा रहा है कि हिमनद टूटने और भूस्खलन के बाद अचानक आई बाढ़ ने पूरी बस्तियों को तबाह कर दिया। नेपाल के रसुवा, नुवाकोट और धादिंग जिलों में राहत दल कटे हुए इलाकों तक पहुंचने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। नेपाल में संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर लीला पीटर्स याहिया ने बताया,
4: We have been provided with $2.5 million from the SURF, and I would like to.
3: हमें संयुक्त राष्ट्र केंद्रीय आपात प्रतिक्रिया कोष से $25 लाख उपलब्ध कराए गए हैं। यूनिसेफ, WFP, UNFPA और WHO सहित सभी UN एजेंसियां सक्रिय हैं, आकलन कर रही हैं और प्रभावित इलाकों में जा रही हैं। नेपाल में संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर लीला पीटर्स याहिया के शब्द। WHO ने संक्रामक बीमारियां फैलने के खतरे पर चेतावनी दी है। यूनिसेफ के अनुसार 18 स्कूल पूरी तरह तबाह हो गए हैं और स्कूल जाने की उम्र के लगभग 10,000 बच्चों को पढ़ाई जारी रखने के लिए सहायता की जरूरत है।
2: मई के मध्य में प्रकोप शुरू होने के बाद से DR कोंगो के 6 प्रभावित प्रांतों में 5,600 से अधिक मामले और 2,700 मौतें दर्ज की गई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार संक्रमण की रफ्तार धीमी हुई है, लेकिन फैलाव का रुझान अभी नहीं बदला है। संयुक्त राष्ट्र मानवीय सहायता समन्वय कार्यालय के अनुसार पड़ोसी बुरुंडी में रोकथाम के प्रयास शुरू हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने गुरुवार को कहा कि कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में तेजी से फैल रहे बुंडी बुग्यो इबोला प्रकोप पर लगाम कसने के लिए तत्काल कार्यवाही और अधिक वित्तीय सहायता की जरूरत है। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: DR कोंगो में बुंडी बुग्यो इबोला प्रकोप की घोषणा को 100 दिन पूरे हो चुके हैं और संक्रमण अब भी तेजी से फैल रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार हर सप्ताह लगभग 500 नए मामले सामने आ रहे हैं। महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा है कि चुनौती बहुत बड़ी है। उन्होंने चेतावनी दी कि राहत प्रयासों के लिए आवश्यक धनराशि का केवल 48% ही उपलब्ध हो पाया है और मौजूदा संसाधन कुछ ही हफ्तों में समाप्त हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इबोला को काबू में करना, संक्रमण की कड़ी तोड़ना और लोगों की जान बचाना संभव है, लेकिन दुनिया को उदासीनता के वायरस से भी लड़ना होगा। पूर्वी डीआर कांगो में हिंसक टकराव, विस्थापन और कमजोर स्वास्थ्य सेवाएं राहत प्रयासों में बाधा बन रही हैं। WHO और UN साझेदारों ने विशेषज्ञों, चिकित्सा सामग्री और सामुदायिक टीमों की तैनाती बढ़ाई है। बुरुंडी और दक्षिण सूडान में भी रोकथाम की तैयारियां तेज की जा रही हैं।
2: वर्ष 2017 में म्यांमार के राकिन प्रांत में सैन्य बलों की भीषण कार्रवाई से बचने के लिए सामूहिक विस्थापन का शिकार हुए रोहिंग्या समुदाय ने सुरक्षा की तलाश में बांग्लादेश का रुख किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने कहा है कि म्यांमार में अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय कई स्तरों पर ऐसी पीड़ा, दुर्दशा और क्रूरता झेल रहा है जो दिल दहला देने वाली है। म्यांमार में सेना और विभिन्न प्रतिरोधी गुटों के बीच भीषण गृह युद्ध जारी है। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: UN की नई रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार में मानवाधिकारों की स्थिति विशेषकर अल्पसंख्यकों के लिए अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। अगस्त 2017 में म्यांमार सेना की कार्रवाई के बाद 7,40,000 से अधिक रोहिंग्या बांग्लादेश भाग गए थे। अधिकतर आज भी वहां शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में सत्ता पर कब्जे के बाद से सैन्य जुंटा कम से कम 8,075 लोगों की जान ले चुका है। सेना पर जबरन भर्ती, हवाई हमलों और मानवीय सहायता रोकने के भी आरोप हैं। वहीं राखीन प्रांत के अधिकतर हिस्से पर नियंत्रण रखने वाली अराकान आर्मी पर भी रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हत्या, यातना, जमीन पर कब्जे और आवाजाही पर पाबंदियों के आरोप लगाए गए हैं। महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा है कि रोहिंग्या लोग बढ़ती असुरक्षा, घटते संरक्षण और स्थायी समाधान की कम होती संभावनाओं का सामना कर रहे हैं।
2: नई दिल्ली स्थित UN हाउस में गुरुवार 27 अगस्त को कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, नवाचार और एक टिकाऊ भविष्य विषय पर आयोजित चर्चा में कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सार्वजनिक नीति, व्यवसाय प्रबंधन, सिविल इंजीनियरिंग और ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों के छात्रों ने हिस्सा लिया। छात्रों ने तेजी से विकसित हो रही AI तकनीक से जुड़े अवसरों और चुनौतियों पर अपने विचार साझा किए। अपनी भारत यात्रा के दौरान संयुक्त राष्ट्र उप महासचिव अमीना जे मोहम्मद ने नई दिल्ली में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के छात्रों के साथ संवाद किया। उन्होंने छात्रों से पूछा कि यह आपकी दुनिया है और इसे आकार देने में आप कितनी भूमिका निभा रहे हैं। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: संयुक्त राष्ट्र उप महासचिव अमीना जे मोहम्मद ने कहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI युवजन के सीखने, काम करने और फैसले लेने के तरीकों को पहले ही बदल रही है। अपनी भारत यात्रा के दौरान उन्होंने गुरुवार को नई दिल्ली स्थित UN हाउस में IIT के छात्रों के साथ बातचीत की। आमिना मोहम्मद ने कहा, ये चीजों को बड़े पैमाने पर बदलेगा। ये केवल एक अतिरिक्त तकनीक नहीं है। आज AI है, कल क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी और तकनीकें होंगी। ये आपकी पीढ़ी और आपकी दुनिया है। सवाल यह है कि इसे आकार देने में आपकी भूमिका कितनी रहेगी। संयुक्त राष्ट्र उप महासचिव आमिना जे मोहम्मद के शब्द। नई दिल्ली में उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और संयुक्त राष्ट्र देशीय टीम से भी मुलाकात की, जहां AI, टिकाऊ विकास और जलवायु कार्रवाई पर भारत UN सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
2: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे, जिसे प्रस्तुत कर रही थी अंशु शर्मा। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। रोम में ऑक्सफर्ड विश्वविद्यालय के ओरियल कॉलेज को रॉयल चार्टर मिलने की 700वीं वर्षगांठ मनाने हेतु इटली पधारे प्रतिनिधियों का वेटिकन में स्वागत करते हुए संत पापा लियो 14वें ने कार्डिनल हेनरी न्यूमन के पद चिन्हों पर चलने के लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित किया। संत पापा ने कहा कि ओरियल का अवश्य ही एक लंबा और शानदार इतिहास रहा है, जिसने समय के लंबे अंतराल में कई परिवर्तन, घटनाएं और उथल पुथल भी देखी है, तथापि कॉलेज अपनी ख्रिस्तीय पहचान पर कायम रहा है। इसलिए आपकी वर्षगांठ पवित्र कुमारी मरियम को समर्पित कॉलेज के तौर पर इसकी कैथलिक शुरुआत का जश्न मनाने का एक सुंदर अवसर है। उन्होंने कहा कि वास्तव में यह पहचान ओरियल को सिर्फ एक अकादमिक संस्था ही नहीं बल्कि विश्वास और विद्वत्ता का एक यथार्थ समुदाय बनाने की कुंजी है। उन्होंने कहा कि इसीलिए कॉलेज अपने अतीत के योगदानों को अपने भावी कार्यों के लिए एक सुनिश्चित नींव और मार्गदर्शक के तौर पर भरोसे के साथ देख सकता है। इस संदर्भ में संत पापा ने कहा कि संत जॉन हेनरी न्यूमन विद्वत्ता के एक शानदार उदाहरण है, जिन्होंने न सिर्फ अपने कामों में बल्कि अपने जीवन में भी विश्वास और तर्कणा की अटूटता को दिखाया। उनके विचारों में बहुत सच्चाई थी, क्योंकि उनका धार्मिक विश्वास ईश्वर के साथ उनके निजी संबंध से जुड़ा था, जबकि उनकी विद्वत्ता अति उत्कृष्ट और साथ ही व्यावहारिक भी थी। संत पापा ने कहा कि संत जॉन न्यूमन के जीवन के दोनों पहलुओं की गहराइयों को सार्वभौमिक कलीसिया के आचार्य और कलीसिया के शैक्षणिक मिशन के सह संरक्षक रूप में कलीसिया की घोषणा में पहचाना गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान जगत की चुनौतियों के संदर्भ में शिक्षा संबंधी संत न्यूमन के वैयक्तिक सुविचार अति सुसंगत हैं, इसलिए कि वे ऐसे प्रशिक्षण का प्रस्ताव करते हैं जो अखंड मानव विकास का आलिंगन करती तथा शिक्षा की कीमत मानव सम्मान, न्याय और सर्व जन कल्याण की क्षमता के अनुकूल नापती है। ओरियल कॉलेज के प्रतिनिधियों को संत पापा ने प्रोत्साहन दिया कि वे साहसपूर्वक सदैव सत्य की खोज में लगे रहें और इस अभिन्न मानवीय शास्त्र दृष्टि को बढ़ावा देते रहें। अरब प्रांतों के लातीनी रीति के कैथलिक धर्माध्यक्षों से मुलाकात के अवसर पर संत पापा लियो 14वें ने अपील की कि कलीसिया गरीबों के प्रति एकजुटता के साथ संघर्ष और विभाजन का सामना करे और इस बात का साक्ष्य दे कि साथ मिलकर जीना और उम्मीद रखना मुमकिन है। गुरुवार को संत पापा लियो ने अरब प्रांतों के लैटिन कैथलिक धर्माधीक्षित सम्मेलनों के सदस्यों से मुलाकात की, जो रोम में अपनी वार्षिक बैठक कर रहे हैं। संत पापा ने इस बात को स्वीकार किया कि अरब के धर्माध्यक्ष एक वृहद और भिन्न भिन्न तरह के इलाके में फैली स्थानीय कलीसिया को मार्गदर्शन देते हैं और ऐसी परिस्थितियों में सेवा करते हैं जहाँ प्रायः राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक तनाव बने रहते हैं। इराक, सीरिया और अरब के अन्य संघर्षरत क्षेत्रों में अपना जीवन अर्पित करने वाले अनेकानेक पुरोहितों एवं धर्म समाजी स्त्री पुरुषों तथा लोकधर्मी विश्वासियों का स्मरण कर संत पापा ने कहा कि इन कलीसियाओं ने शहादत के साक्ष्य को जाना है। उन्होंने कहा कि अपनी पल्लियों, स्कूलों और अस्पतालों में अपने काम के जरिए कलीसिया जरूरतमंद लोगों की बात सुनकर उनका स्वागत कर और उन्हें समर्थन प्रदान कर विशेषकर धर्म समाजों के कार्यों द्वारा सुसमाचार की सच्चाई को प्रसारित करती है। संत पापा ने धर्माध्यक्षों से आग्रह किया कि आपातकालीन स्थितियों में वे कलीसिया के यथार्थ मिशन को न भुलाएं, जो है सुसमाचार की उद्घोषणा, प्रार्थना, संस्कार और ख्रिस्तीय प्रशिक्षण। धर्माध्यक्षों से उन्होंने अनुरोध किया कि अपने अपने क्षेत्रों के परिवारों और युवाओं पर वे विशेष ध्यान केंद्रित करें तथा उनकी कठिनाइयों और अनिश्चितताओं में उनकी मदद करें। संत पापा लियो 14वें से साक्षात्कार के उपरांत बुधवार को साल्ज़बर्ग यूथ ऑर्केस्ट्रा बेल्ला मूजिका ने वैटिकन के उद्यान के ऐतिहासिक वैटिकन रेडियो स्टूडियो में एक कॉन्सर्ट रिकॉर्ड किया, जिसमें ऑस्ट्रिया के दो संगीत पंडितों द्वारा 250 वर्ष पूर्व रोम लाए गए दो मौलिक मोजार्ट वायलिनों का इस्तेमाल किया गया। साप्ताहिक आमदर्शन समारोह के अंत में संत पापा लियो ने मोजार्ट के दो मौलिक वायलिन में से एक डेला कोस्टा वायलिन को अपने हाथों में लिया, जो वियना में उनके समय का मोजार्ट का कॉन्सर्ट वायलिन था। मोजार्ट न्यास इसे मोजार्ट के बाल्यकाल के वायलिन के साथ रोम ले आया था।
मोजार्ट न्यास के निर्देशक लीनस कुम्पलर ने इस पल को एक स्वप्रेरित प्रतिक्रिया निरूपित किया। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग ऐसे वाद्य यंत्र को संभालने में सहज महसूस नहीं करते क्योंकि ये बहुत नाजुक होते हैं, किंतु संत पापा लियो ने बड़ी सरलता से वायलिन को अपने हाथों में लिया। उन्होंने कहा कि बेशक यह ऐतिहासिक संबंध हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है क्योंकि यह एक तरह से वोल्फगांग अमादेउस मोजार्ट की 250 से अधिक वर्षों के बाद रोम में घर वापसी है। गौरतलब है कि 1770 में 14 वर्ष की आयु में मोजार्ट ने अपने पिता लियोपोल्ड के साथ इटली की अपनी पहली यात्रा के दौरान संत पापा क्लेमेंट 14वें के समक्ष इस वायलिन को बजाया था। वैटिकन में गुरुवार को एक सम्मेलन संपन्न हुआ जिसमें यह पता लगाने का प्रयास किया गया कि टेक्नोलॉजी कला संस्कृति और मानवीय मस्तिष्क को कैसे बदल रही है। इस बात पर चिंतन किया गया कि AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से मानवता को मिलने वाले रचनात्मक उठाव को बुद्धिगम्य करने के लिए समझदारी की जरूरत है। दार्शनिक टेक्नोलॉजी एंटरप्रेनर और इंटरनेशनल सेंटर फॉर कॉन्शियसनेस स्टडीज के संस्थापक दिमित्री वोल्कोव कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कार की तरह है। यह बहुत ज्यादा तेजी से गाड़ी चलाने में मदद करती है, लेकिन जब हम एक अच्छी कार, खासकर रेसिंग कार बनाते हैं, तो हमें उसे दीवारों से टकराने से बचाने के लिए बहुत प्रभावशाली और भरोसेमंद ब्रेक बनाने पर पूरा ध्यान देना चाहिए। यह सम्मेलन मंगलवार को रोमा त्रे विश्वविद्यालय में शुरू हुआ था, जो बाद में वैटिकन के कसिनो पियो चौथे भवन में जारी रखा और गुरुवार को समाप्त हो गया। इंटरनेशनल सेंटर फॉर कॉन्शियसनेस स्टडीज के सह संस्थापक और दार्शनिक पियेत्रो परकोंती का मानना था कि आर्टिफिशियल क्रिएटिविटी की बात करना गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि वैटिकन में संपन्न सम्मेलन में इस बात को समझने का प्रयास किया गया कि क्या मनुष्यों और कृत्रिम साथियों के बीच रिश्तों की कल्पना करना संभव है। उन्होंने बताया कि विचार विमर्श के दौरान संत पापा लियो के विश्व पत्र मनीफिका उमानितास के संदेश पर ध्यान दिया गया, जिसमें कहा गया है कि सब कुछ का केंद्र लोगों को बनाया जाए। यह केवल धार्मिक आवश्यकता ही नहीं है, यह एक मानवीय आवश्यकता है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओ, बुधवार 26 अगस्त को चीन से लगी नेपाल की सीमा पर हिमनद टूटने और भूस्खलन से आई विनाशकारी बाढ़ से भारी तबाही हुई है। अब तक 1290 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 4200 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। त्रिशूली ए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में 9 दिनों तक फंसे रहने के बाद आज 2 लोगों को जिंदा बचा लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता स्टेफान दुजारिक ने बताया कि अवरुद्ध सड़कों और राजमार्गों के कारण राहत व बचाव दलों के लिए सबसे अधिक प्रभावित इलाकों तक पहुंचना बेहद मुश्किल बना हुआ है। 65,000 लोगों को स्वच्छ पानी और साफ सफाई से जुड़ी आपात सहायता की जरूरत है। अब तक 10,000 से अधिक लोगों को बचाया गया है, जिनमें 252 विदेशी नागरिक शामिल हैं। इस आपदा का असर सीमा पार तिब्बत के इलाकों में भी पड़ा है। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से भारी तबाही हुई है। अधिकारियों के अनुसार चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में भी बाढ़ का असर हुआ है, जहां लगभग 560 लोग लापता बताए गए हैं। माना जा रहा है कि हिमनद टूटने और भूस्खलन के बाद अचानक आई बाढ़ ने पूरी बस्तियों को तबाह कर दिया। नेपाल के रसुवा, नुवाकोट और धादिंग जिलों में राहत दल कटे हुए इलाकों तक पहुंचने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। नेपाल में संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर लीला पीटर्स याया ने बताया,
4: We have been provided with $2.5 million from the SURF, and I would like to.
3: हमें संयुक्त राष्ट्र केंद्रीय आपात प्रतिक्रिया कोष से $25 लाख उपलब्ध कराए गए हैं। यूनिसेफ, WFP, UNFPA और WHO सहित सभी UN एजेंसियां सक्रिय हैं, आकलन कर रही हैं और प्रभावित इलाकों में जा रही हैं। नेपाल में संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर लीला पीटर्स याया के शब्द। WHO ने संक्रामक बीमारियां फैलने के खतरे पर चेतावनी दी है। यूनिसेफ के अनुसार 18 स्कूल पूरी तरह तबाह हो गए हैं और स्कूल जाने की उम्र के लगभग 10,000 बच्चों को पढ़ाई जारी रखने के लिए सहायता की जरूरत है।
2: मई के मध्य में प्रकोप शुरू होने के बाद से DR कोंगो के 6 प्रभावित प्रांतों में 5,600 से अधिक मामले और 2,700 मौतें दर्ज की गई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार संक्रमण की रफ्तार धीमी हुई है, लेकिन फैलाव का रुझान अभी नहीं बदला है। संयुक्त राष्ट्र मानवीय सहायता समन्वय कार्यालय के अनुसार पड़ोसी बुरुंडी में रोकथाम के प्रयास शुरू हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने गुरुवार को कहा कि कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में तेजी से फैल रहे बुंडी बुग्यो इबोला प्रकोप पर लगाम कसने के लिए तत्काल कार्यवाही और अधिक वित्तीय सहायता की जरूरत है। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: DR कोंगो में बुंडी बुग्यो इबोला प्रकोप की घोषणा को 100 दिन पूरे हो चुके हैं और संक्रमण अब भी तेजी से फैल रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार हर सप्ताह लगभग 500 नए मामले सामने आ रहे हैं। महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा है कि चुनौती बहुत बड़ी है। उन्होंने चेतावनी दी कि राहत प्रयासों के लिए आवश्यक धनराशि का केवल 48% ही उपलब्ध हो पाया है और मौजूदा संसाधन कुछ ही हफ्तों में समाप्त हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इबोला को काबू में करना, संक्रमण की कड़ी तोड़ना और लोगों की जान बचाना संभव है, लेकिन दुनिया को उदासीनता के वायरस से भी लड़ना होगा। पूर्वी डीआर कांगो में हिंसक टकराव, विस्थापन और कमजोर स्वास्थ्य सेवाएं राहत प्रयासों में बाधा बन रही हैं। WHO और UN साझेदारों ने विशेषज्ञों, चिकित्सा सामग्री और सामुदायिक टीमों की तैनाती बढ़ाई है। बुरुंडी और दक्षिण सूडान में भी रोकथाम की तैयारियां तेज की जा रही हैं।
2: वर्ष 2017 में म्यांमार के राकिन प्रांत में सैन्य बलों की भीषण कार्रवाई से बचने के लिए सामूहिक विस्थापन का शिकार हुए रोहिंग्या समुदाय ने सुरक्षा की तलाश में बांग्लादेश का रुख किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने कहा है कि म्यांमार में अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय कई स्तरों पर ऐसी पीड़ा, दुर्दशा और क्रूरता झेल रहा है जो दिल दहला देने वाली है। म्यांमार में सेना और विभिन्न प्रतिरोधी गुटों के बीच भीषण गृह युद्ध जारी है। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: UN की नई रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार में मानवाधिकारों की स्थिति विशेषकर अल्पसंख्यकों के लिए अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। अगस्त 2017 में म्यांमार सेना की कार्रवाई के बाद 7,40,000 से अधिक रोहिंग्या बांग्लादेश भाग गए थे। अधिकतर आज भी वहां शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में सत्ता पर कब्जे के बाद से सैन्य जुंटा कम से कम 8,075 लोगों की जान ले चुका है। सेना पर जबरन भर्ती, हवाई हमलों और मानवीय सहायता रोकने के भी आरोप हैं। वहीं राखीन प्रांत के अधिकतर हिस्से पर नियंत्रण रखने वाली अराकान आर्मी पर भी रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हत्या, यातना, जमीन पर कब्जे और आवाजाही पर पाबंदियों के आरोप लगाए गए हैं। महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा है कि रोहिंग्या लोग बढ़ती असुरक्षा, घटते संरक्षण और स्थायी समाधान की कम होती संभावनाओं का सामना कर रहे हैं।
2: नई दिल्ली स्थित UN हाउस में गुरुवार 27 अगस्त को कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, नवाचार और एक टिकाऊ भविष्य विषय पर आयोजित चर्चा में कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सार्वजनिक नीति, व्यवसाय प्रबंधन, सिविल इंजीनियरिंग और ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों के छात्रों ने हिस्सा लिया। छात्रों ने तेजी से विकसित हो रही AI तकनीक से जुड़े अवसरों और चुनौतियों पर अपने विचार साझा किए। अपनी भारत यात्रा के दौरान संयुक्त राष्ट्र उप महासचिव अमीना जे मोहम्मद ने नई दिल्ली में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के छात्रों के साथ संवाद किया। उन्होंने छात्रों से पूछा कि यह आपकी दुनिया है और इसे आकार देने में आप कितनी भूमिका निभा रहे हैं। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: संयुक्त राष्ट्र उप महासचिव अमीना जे मोहम्मद ने कहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI युवजन के सीखने, काम करने और फैसले लेने के तरीकों को पहले ही बदल रही है। अपनी भारत यात्रा के दौरान उन्होंने गुरुवार को नई दिल्ली स्थित UN हाउस में IIT के छात्रों के साथ बातचीत की। आमिना मोहम्मद ने कहा, ये चीजों को बड़े पैमाने पर बदलेगा। ये केवल एक अतिरिक्त तकनीक नहीं है। आज AI है, कल क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी और तकनीकें होंगी। ये आपकी पीढ़ी और आपकी दुनिया है। सवाल यह है कि इसे आकार देने में आपकी भूमिका कितनी रहेगी। संयुक्त राष्ट्र उप महासचिव आमिना जे मोहम्मद के शब्द। नई दिल्ली में उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और संयुक्त राष्ट्र देशीय टीम से भी मुलाकात की, जहां AI, टिकाऊ विकास और जलवायु कार्रवाई पर भारत UN सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
2: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे, जिसे प्रस्तुत कर रही थी अंशु शर्मा। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। रोम में ऑक्सफर्ड विश्वविद्यालय के ओरियल कॉलेज को रॉयल चार्टर मिलने की 700वीं वर्षगांठ मनाने हेतु इटली पधारे प्रतिनिधियों का वेटिकन में स्वागत करते हुए संत पापा लियो 14वें ने कार्डिनल हेनरी न्यूमन के पद चिन्हों पर चलने के लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित किया। संत पापा ने कहा कि ओरियल का अवश्य ही एक लंबा और शानदार इतिहास रहा है, जिसने समय के लंबे अंतराल में कई परिवर्तन, घटनाएं और उथल पुथल भी देखी है, तथापि कॉलेज अपनी ख्रिस्तीय पहचान पर कायम रहा है। इसलिए आपकी वर्षगांठ पवित्र कुमारी मरियम को समर्पित कॉलेज के तौर पर इसकी कैथलिक शुरुआत का जश्न मनाने का एक सुंदर अवसर है। उन्होंने कहा कि वास्तव में यह पहचान ओरियल को सिर्फ एक अकादमिक संस्था ही नहीं बल्कि विश्वास और विद्वत्ता का एक यथार्थ समुदाय बनाने की कुंजी है। उन्होंने कहा कि इसीलिए कॉलेज अपने अतीत के योगदानों को अपने भावी कार्यों के लिए एक सुनिश्चित नींव और मार्गदर्शक के तौर पर भरोसे के साथ देख सकता है। इस संदर्भ में संत पापा ने कहा कि संत जॉन हेनरी न्यूमन विद्वत्ता के एक शानदार उदाहरण है, जिन्होंने न सिर्फ अपने कामों में बल्कि अपने जीवन में भी विश्वास और तर्कणा की अटूटता को दिखाया। उनके विचारों में बहुत सच्चाई थी, क्योंकि उनका धार्मिक विश्वास ईश्वर के साथ उनके निजी संबंध से जुड़ा था, जबकि उनकी विद्वत्ता अति उत्कृष्ट और साथ ही व्यावहारिक भी थी। संत पापा ने कहा कि संत जॉन न्यूमन के जीवन के दोनों पहलुओं की गहराइयों को सार्वभौमिक कलीसिया के आचार्य और कलीसिया के शैक्षणिक मिशन के सह संरक्षक रूप में कलीसिया की घोषणा में पहचाना गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान जगत की चुनौतियों के संदर्भ में शिक्षा संबंधी संत न्यूमन के वैयक्तिक सुविचार अति सुसंगत हैं, इसलिए कि वे ऐसे प्रशिक्षण का प्रस्ताव करते हैं जो अखंड मानव विकास का आलिंगन करती तथा शिक्षा की कीमत मानव सम्मान, न्याय और सर्व जन कल्याण की क्षमता के अनुकूल नापती है। ओरियल कॉलेज के प्रतिनिधियों को संत पापा ने प्रोत्साहन दिया कि वे साहसपूर्वक सदैव सत्य की खोज में लगे रहें और इस अभिन्न मानवीय शास्त्र दृष्टि को बढ़ावा देते रहें। अरब प्रांतों के लातीनी रीति के कैथलिक धर्माध्यक्षों से मुलाकात के अवसर पर संत पापा लियो 14वें ने अपील की कि कलीसिया गरीबों के प्रति एकजुटता के साथ संघर्ष और विभाजन का सामना करे और इस बात का साक्ष्य दे कि साथ मिलकर जीना और उम्मीद रखना मुमकिन है। गुरुवार को संत पापा लियो ने अरब प्रांतों के लैटिन कैथलिक धर्माधीक्षित सम्मेलनों के सदस्यों से मुलाकात की, जो रोम में अपनी वार्षिक बैठक कर रहे हैं। संत पापा ने इस बात को स्वीकार किया कि अरब के धर्माध्यक्ष एक वृहद और भिन्न भिन्न तरह के इलाके में फैली स्थानीय कलीसिया को मार्गदर्शन देते हैं और ऐसी परिस्थितियों में सेवा करते हैं जहाँ प्रायः राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक तनाव बने रहते हैं। इराक, सीरिया और अरब के अन्य संघर्षरत क्षेत्रों में अपना जीवन अर्पित करने वाले अनेकानेक पुरोहितों एवं धर्म समाजी स्त्री पुरुषों तथा लोकधर्मी विश्वासियों का स्मरण कर संत पापा ने कहा कि इन कलीसियाओं ने शहादत के साक्ष्य को जाना है। उन्होंने कहा कि अपनी पल्लियों, स्कूलों और अस्पतालों में अपने काम के जरिए कलीसिया जरूरतमंद लोगों की बात सुनकर उनका स्वागत कर और उन्हें समर्थन प्रदान कर विशेषकर धर्म समाजों के कार्यों द्वारा सुसमाचार की सच्चाई को प्रसारित करती है। संत पापा ने धर्माध्यक्षों से आग्रह किया कि आपातकालीन स्थितियों में वे कलीसिया के यथार्थ मिशन को न भुलाएं, जो है सुसमाचार की उद्घोषणा, प्रार्थना, संस्कार और ख्रिस्तीय प्रशिक्षण। धर्माध्यक्षों से उन्होंने अनुरोध किया कि अपने अपने क्षेत्रों के परिवारों और युवाओं पर वे विशेष ध्यान केंद्रित करें तथा उनकी कठिनाइयों और अनिश्चितताओं में उनकी मदद करें। संत पापा लियो 14वें से साक्षात्कार के उपरांत बुधवार को साल्ज़बर्ग यूथ ऑर्केस्ट्रा बेल्ला मूजिका ने वैटिकन के उद्यान के ऐतिहासिक वैटिकन रेडियो स्टूडियो में एक कॉन्सर्ट रिकॉर्ड किया, जिसमें ऑस्ट्रिया के दो संगीत पंडितों द्वारा 250 वर्ष पूर्व रोम लाए गए दो मौलिक मोजार्ट वायलिनों का इस्तेमाल किया गया। साप्ताहिक आम दर्शन समारोह के अंत में संत पापा लियो ने मोजार्ट के दो मौलिक वायलिन में से एक डेला कोस्टा वायलिन को अपने हाथों में लिया, जो वियना में उनके समय का मोजार्ट का कॉन्सर्ट वायलिन था। मोजार्ट न्यास इसे मोजार्ट के बाल्यकाल के वायलिन के साथ रोम ले आया था।
मोजार्ट न्यास के निर्देशक लीनस कुम्पलर ने इस पल को एक स्व प्रेरित प्रतिक्रिया निरूपित किया। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग ऐसे वाद्य यंत्र को संभालने में सहज महसूस नहीं करते क्योंकि ये बहुत नाजुक होते हैं, किंतु संत पापा लियो ने बड़ी सरलता से वायलिन को अपने हाथों में लिया। उन्होंने कहा कि बेशक यह ऐतिहासिक संबंध हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है क्योंकि यह एक तरह से वोल्फगंग अमादेउस मोजार्ट की 250 से अधिक वर्षों के बाद रोम में घर वापसी है। गौरतलब है कि 1770 में 14 वर्ष की आयु में मोजार्ट ने अपने पिता लियोपोल्ड के साथ इटली की अपनी पहली यात्रा के दौरान संत पापा क्लेमेंट 14वें के समक्ष इस वायलिन को बजाया था। वैटिकन में गुरुवार को एक सम्मेलन संपन्न हुआ जिसमें यह पता लगाने का प्रयास किया गया कि टेक्नोलॉजी कला संस्कृति और मानवीय मस्तिष्क को कैसे बदल रही है। इस बात पर चिंतन किया गया कि AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से मानवता को मिलने वाले रचनात्मक उठाव को बुद्धिगम्य करने के लिए समझदारी की जरूरत है। दार्शनिक टेक्नोलॉजी एंटरप्रेनर और इंटरनेशनल सेंटर फॉर कॉन्शियसनेस स्टडीज के संस्थापक दिमित्री वोल्कोव कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कार की तरह है। यह बहुत ज्यादा तेजी से गाड़ी चलाने में मदद करती है, लेकिन जब हम एक अच्छी कार, खासकर रेसिंग कार बनाते हैं, तो हमें उसे दीवारों से टकराने से बचाने के लिए बहुत प्रभावशाली और भरोसेमंद ब्रेक बनाने पर पूरा ध्यान देना चाहिए। यह सम्मेलन मंगलवार को रोमा त्रे विश्वविद्यालय में शुरू हुआ था, जो बाद में वैटिकन के कैसिनो पियो चौथे भवन में जारी रखा और गुरुवार को समाप्त हो गया। इंटरनेशनल सेंटर फॉर कॉन्शियसनेस स्टडीज के सह संस्थापक और दार्शनिक पियेत्रो परकोंती का मानना था कि आर्टिफिशियल क्रिएटिविटी की बात करना गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि वैटिकन में संपन्न सम्मेलन में इस बात को समझने का प्रयास किया गया कि क्या मनुष्यों और कृत्रिम साथियों के बीच रिश्तों की कल्पना करना संभव है। उन्होंने बताया कि विचार विमर्श के दौरान संत पापा लियो के विश्व पत्र मनीफिका उमानितास के संदेश पर ध्यान दिया गया, जिसमें कहा गया है कि सब कुछ का केंद्र लोगों को बनाया जाए। यह केवल धार्मिक आवश्यकता ही नहीं है, यह एक मानवीय आवश्यकता है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पवित्र रोजरी माला विनते।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट पर।

0: और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद के पहला भेद, गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
2: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज माफ हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: भैया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।

0: परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: भैया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
2: मतलब पापियों के मन फिराव के लिए।
0: पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे

0: हमें इस समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में पाए जाते हैं,
2: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुमारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारियों की पवित्र कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।

0: प्रार्थना द्वारा
1: हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, मानव का एक दूसरे के प्रति चिंता हमारे मानवीय होने के गुण को अभिव्यक्त करता है। अपनी सजीव मानवता के कारण हम एक दूसरे के संग उनके दुख सुख अच्छी बुरी परिस्थितियों में सहभागी होती और जरूरत के अनुरूप अपने कार्यों को करते हैं, जिससे हम एक दूसरे के निकट रहने वालों की भलाई करते हों। हमारी मानवीय संवेदनशीलता हमें ईश्वर के सारे श्रेष्ठ प्राणियों में एक अलग पहचान प्रदान करती है, जहां हम सारे सृष्टि के सिरमौर बनते हैं। श्रोताओ, वर्ष के 23वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए सभी पाठों में हम मानवीय जीवन के सार की अभिव्यक्ति को पाते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने में इस बात की थाह लें कि हम अपने मानवीय होने की अभिव्यक्ति को दूसरों के संग किस रूप में व्यक्त करते हैं। क्या हम में व्याप्त ईश्वर से मिली अच्छाइयां दूसरों की अच्छाई और भलाई में व्यक्त होती हैं? क्या हम अपने मानवीय प्रकृति के अनुरूप दूसरों के हित का ख्याल रखते हुए अपने दैनिक जीवन के कार्यों का निष्पादन करते हैं?
1: यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने भाई को बचा लिया। यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता तो और दो एक व्यक्तियों को साथ ले जाओ, ताकि दो या तीन गवाहों के सहारे सब कुछ प्रमाणित हो जाए। यदि वह उनकी भी नहीं सुनता तो कलीसिया को बता दो, और यदि वह कलीसिया की भी नहीं सुनता तो उसे गैर यहूदी और नाकेदार समझो। मैं तुमसे कह देता हूँ, तुम लोग पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसको अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। मैं तुमसे यह कह देता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में से दो व्यक्ति एकमत होकर कुछ भी मांगेंगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गिक पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा, क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ।
0: श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें अपने जीवन में हृदय के अपने भंडार से अच्छी चीजें निकाल कर दूसरों को देने में मदद करे, जिससे हमारे द्वारा ईश्वरीय जीवन का संचार जरूरतमंद लोगों के लिए हो सके। श्रोताओ, नबी एजेकियल के ग्रंथ से लिए गए आज के पहले पाठ में ईश्वर नबी को इसराइल के घराने हेतु एक पहरेदार नियुक्त करते हैं। एक पहरेदार का कार्य लोगों को सब समय सतर्क और सजग रहने का आह्वान करना है। वह उन्हें अनहोनियों के प्रति पहले से तैयार रहने को घोषित करता है। ईश्वर नबी को एक पहरेदार स्वरूप नियुक्त करते हैं, जिससे वे चुनी हुई प्रजा को पापों और बुराइयों से बचे रहने का आह्वान करें, उन्हें चुनौती प्रदान करें, क्योंकि पाप और बुराई हमें ईश्वर से दूर अनंत मृत्यु की ओर अग्रसर करती है। यहां हम ईश्वर के प्रति नबी के निष्ठावान बने रहने की बात सुनते हैं, जो ईश्वर के प्रति हमारी निष्ठा पर भी चिंतन करने की चुनौती प्रदान करता है। ईश्वर ने हमें जीवन प्रदान करते हुए अपने मुक्तिदायी कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने हमें नबी के रूप में नियुक्त किया है, जिससे हम पाप और मृत्यु से अपने को मिले मुक्तिदायी जीवन को दूसरों के संग साझा करें। हम दूसरों को पाप में गिरने से बचाएं, क्योंकि हम स्वयं पाप और उसके कारण होने वाली मृत्यु से बचाए गए हैं। श्रोताओं, यह हमें रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिए गए आज के दूसरे पाठ से संयुक्त करता है, जहां हम भ्रातृत्वमय प्रेम के ऋण की चर्चा सुनते हैं। यह हमें दूसरों को अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम करने की बात कहता है। मानवीय प्रेम एक तरह से ऋण की भांति है, जिसे हम दूसरों के लिए देते हैं। यह अपने को बिना सूद की चाह रखे दूसरों के लिए व्यय करना है, दूसरों के हित का ख्याल रखते हुए अपने को देना, जिससे पाने वाले अपने जीवन में आनंद और खुशी का अनुभव करें, जो उनके लिए जीवन में सर्वांगिक विकास का कारण बने। श्रोताओं, आज का सुसमाचार जिसका श्रवण हमने किया, हमें पड़ोसी प्रेम के एक दूसरे महत्वपूर्ण आयाम को गहरे रूप में व्यक्त करता है, जिसे हम भ्रातृत्व में सुधार स्वरूप पाते हैं। किसी के लिए हमारा यह भ्रातृत्व में सुधार हमारे लिए उस व्यक्ति के लिए एक प्रेम की निशानी है, जो हमारे हृदय में उसके प्रति एक नेक चाह को व्यक्त करता है। लेकिन यह बहुधा आज की परिस्थिति में गलत मनोभावों से लिया जाता है, जिसके फलस्वरूप सुधार की जगह हम एक बिगाड़ को पाते हैं। यही कारण है कि हम अपने अजीज मित्रों के संबंध में भी केवल मीठी मीठी बातें तक ही अपने को सीमित कर लेते हैं, जबकि उनकी कमजोरियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराना हमारे लिए कठिन और भयजनक लगता है। आज के सुसमाचार में यीशु हमें अपने समाज के ताने बाने को सुरक्षित और व्यवस्थित रखने की चुनौती प्रस्तुत करते हैं। गलती और कोई अपराध कोई भी व्यक्ति से किसी भी परिस्थिति में सहज हो सकता है, जो हमारे लिए मानवीय कमजोरी को व्यक्त करता है। लेकिन हम उस गलती या अपराध के सुधार हेतु किस तरह की पहल अपनी ओर से करते हैं? यदि हम अपने भाई बहनों की गलतियों के सुधार हेतु अपनी ओर से पहल नहीं करते, तो उनकी गलतियों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है और हम उनके लिए जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। श्रोताओं, आज यीशु हमें अपने बीच में होने वाली गलतियों के सुधार हेतु तीन स्तर के सुझाव प्रस्तुत करते हैं। पहला, गलती करने वाले को व्यक्तिगत रूप में समझाना। दूसरा, उसे दो या तीन के संग मिलकर गलतियों को देखने और अपने में सुधार लाने को मदद करना, और सुधार ना होने पर तीसरे स्तर में उसे कलीसिया के सामने प्रस्तुत करना और अंततः सामाजिक रूप में अपराधी के रूप में देखना। श्रोताओं, आज के प्रभु वचन का सार, ईश्वरीय संतानों के रूप में हमें एक दूसरे की चिंता करते हुए प्रेम के सूत्र में सदैव बंधे रहने का आह्वान करता है। यह हमें अपने समुदाय में प्रेम और एकता में भ्रातृत्वपूर्ण संबंध बनाए रखने का संदेश देता है, जिसके ताने बाने को सुरक्षित रखने हेतु स्वयं उन्होंने मानव बनना स्वीकार किया। आइए हम माता मरियम से निवेदन करें कि वे हमें अपने परिवारों और समुदायों को सुरक्षित रखने में मदद करना सिखाएं, जहां हम दूसरों की सच्ची चिंता करते हुए ख्रिस्तीय प्रेम में एक दूसरे के संग सदैव संयुक्त रह सकें।

0: आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत समाचार। पोप लियो 14वें ने शनिवार को वैटिकन में एकांत मठवासी धर्म बहनों का स्वागत किया और उनकी उपस्थिति को ईश्वर की कृपा का एक चमकदार साक्ष्य बतलाया, जो मानव के दिल में उनके चेहरे को खोजने और उन पर चिंतन करने की इच्छा उत्पन्न करता है। पौत्रतम संस्कार की अनवरत आराधना की धर्म बहने, जिन्हें सैक्रमेंटाइन धर्म बहने भी कहा जाता है, उनके धर्म संघ की स्थापना 1807 ईस्वी में रोम में शरीर धारण की धन्या मरियम मगदलीना के द्वारा हुई थी। एकांत मठवासी धर्म बहने दिन और रात पौत्रतम संस्कार की आराधना के लिए समर्पित हैं। पोप से मुलाकात करने वाली धर्म बहने पौत्र आत्मा के संघ के सदस्य हैं। यह लगभग 30 मठों का एक दल है, जिनमें से अधिकांश मेक्सिको में है। धर्म बहने पौत्र आत्मा के संघ की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ पर इन दिनों इटली की तीर्थ यात्रा पर हैं। पोप ने कहा, ईश्वर के चेहरे की यह निरंतर खोज जो मठवासी जीवन की विशेषता है, आपकी बुलाहट में एक सूक्ष्म फर्क पर आधारित है। यह पूरी तरह ईश्वर की निरंतर एवं मौन आराधना के लिए समर्पित जीवन है, जो रोटी बन गए और जो हमें एक शरीर बनाने के लिए वेदी के बलिदान में उनके साथ एक होने के लिए आमंत्रित करते हैं। जैसा कि संत अगस्तीन अपनी कलीसिया के नए सदस्यों को समझाते हैं, वेदी पर रोटी और दाखरस मसीह में विश्वासियों की एकता का संस्कार है। संत पापा ने मठवासी धर्म बहनों से कहा कि वे अपनी संस्थापिका द्वारा प्राप्त कैरिज्म के अनुरूप प्रार्थना और काम के धागों से मठ में यूखारिस्ते आराधना और भाईचारा के साथ मिलकर काम करने के लिए बुलाए गए हैं। पौत्र आत्मा के संघ की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ पर पोप ने कहा, यह कृपा का समय जिसको वे अनंत शहर में और उन जगहों पर तीर्थयात्रियों के रूप में अनुभव कर रहे हैं जहां धम्म संघ की शुरुआत हुई थी, उन्हें वे नवीनीकृत करें और मजबूत बनाएं। संत पापा ने उन्हें संस्थापिका ख्रिस्त के शरीर धारण की धन्या मरियम मगदलीना के आदर्शों पर चलने का प्रोत्साहन दिया, ताकि वे अपने समर्पण को नवीनीकृत आशा और पौत्रता की चाह के साथ जीते रहें। उन्होंने कहा, याद रखें, सुसमाचार के पुराने और हरदम नवीन रहने वाले प्रज्ञा के प्रति निष्ठा ही उन लोगों के लिए सबसे अच्छा रास्ता है जो पौत्र आत्मा के मार्गदर्शन में खुद को ईश्वर और पड़ोसी से प्यार करने के लिए समर्पित करते हैं। अंत में संत पापा ने उन्हें ग्वादालूपे की माता मरियम की सुरक्षा में सुपोर्द किया तथा उन पर प्रभु से आशीर्वाद की कामना की। विद्वान, राजनेता, उद्यमी, धार्मिक नेता, कार्यकर्ता और युवा इंडोनेशिया में एकत्रित हैं ताकि हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक पर चिंतन कर सकें, और यह चुनौती है कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मानव प्रतिष्ठा, भाईचारे और शांति की सेवा में कैसे लगाया जा सके। स्कोलास्टिक्स, जो वैश्विक शैक्षिक नेटवर्क और मिलकर काम करने की जगहें हैं, जो स्कोलास और करिन्थस आंदोलन द्वारा यूनिवर्सिटी एवं रिसर्चर को जोड़ती हैं, इस हफ्ते इंडोनेशिया में अपनी 11वीं इंटरनेशनल कांग्रेस की मेजबानी कर रही हैं। 4 से 6 सितंबर तक चलने वाली 3 दिनों की कांग्रेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मानव संवेदना के सवाल पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
1: जिबूती के धर्माध्यक्ष और सोमालिया के प्रेरितिक प्रशासक धर्माध्यक्ष जमाल डेब्स ने पवित्र भूमि में फिलिस्तीनियों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राजनयिक दबाव बनाने की अपील की, ताकि वे सम्मान, आजादी और सुरक्षा के साथ अपने देश में रह सकें। अरब इलाकों के लैटिन धर्माध्यक्षों के साथ शुक्रवार 4 सितंबर को संत पापा लियो 14वें से मिलने के बाद रोम में वाटिकन न्यूज से बातें करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि डर और हिंसा फिलिस्तीनियों को उस जमीन को छोड़ने पर मजबूर कर रही है जहां ख्रिस्तीय कलीसिया की शुरुआती दिनों से रह रहे हैं। धर्माध्यक्ष डेब्स के लिए पवित्र भूमि में लड़ाई को सिर्फ राजनीतिक दावों तक ही सीमित नहीं किया जा सकता है। वे कहते हैं कि इसके केंद्र में यह है कि क्या लोग अपने देश में रह सकते हैं और वहां गरिमा, सुरक्षा और आज़ादी के साथ रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी ख्रिस्तीय व्यापक फिलिस्तीनी आबादी के साथ पीड़ित है, लेकिन ख्रिस्तीय गांवों और कस्बों पर हाल के हमलों ने एक नया आयाम जोड़ा है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि ख्रिस्तीय अन्य सभी फिलिस्तीनियों की तरह कब्जे के तहत पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों का मकसद डर पैदा करना और अंत में लोगों को देश छोड़ने के लिए मजबूर करना है। انہوں نے کلیسیا اور انتراشٹریہ سمودائے سے اپیل کی، ہمیں کلیسیاؤں کی ایکتا، انتراشٹریہ سمودائے کی ایکتا کی ضرورت ہے اور دباؤ بنانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ رک جائے۔ دھرمادھیکس ڈیبز کے لیے سنت پاپا لیو 14 کے ساتھ میٹنگ کی سب سے ضروری باتوں میں سے ایک یہ تھی کہ انہیں سیدھے ان سے یہ سننے کو ملا کہ اس علاقے میں رہنے والے کرسچن اکیلے نہیں ہیں۔ انہوں نے ہمیں واپس جانے اور اپنے ساتھ سوسماچار اور اپنے لوگوں کے لیے امید لے کر چلنے کا پروتساہن دیا۔ ادھر نیپال میں ایک ہفتے سے زیادہ سمے بعد مرنے والوں کی سنکھیا لگ بھگ 1,300 ہو گئی ہے اور 5,600 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں اور قریب 900 مزدور ابھی بھی ہائیڈرو الیکٹرک ٹنل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ نیپالی سینا نے بتایا کہ آج شنیوار کو اپر تریشولی پاور پروجیکٹ کے آڈٹ 4 سرنگ میں ایک چینی کرمچاری کو بچا لیا گیا۔ نیپال سینا نے بتایا کہ وہ 225 میٹر لمبی سرنگ کے اندر پائے گئے۔ شکروار 4 ستمبر کو راسوا گڑی ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ کی انڈر گراؤنڈ ٹنل سے 2 لوگوں کو زندہ باہر نکالا گیا۔ کاٹھمانڈو ہاسپٹل لے جانے سے پہلے اس ویکتی نے پورے بھروسے کے ساتھ کہا کہ وہاں اور بھی لوگ زندہ ہیں، ابھی تک صرف ایک باڈی ملی ہے۔ پھر بھی اس ایک ٹنل سے کم 39 اور مزدوروں کو بچانے کی امید ہے۔ اب تک 10,000 سے ادھک لوگوں کو بچایا گیا ہے، جن میں 252 ودیشی ناگرک شامل ہیں۔ جیسے جیسے تباہ ہوئے گاؤں میں زندہ لوگوں کے ملنے کی امید کم ہوتی جا رہی ہے، سینکڑوں ہندو پریواروں نے پرتیکاتمک انتم سنسکار کرنا شروع کر دیا ہے۔ پجاری پوال کی مورتیاں رکھتے ہیں اور آگ جلاتے ہیں۔ یہ رسم ان کے لاپتہ رشتہ داروں کی آتما کو شانتی دینے کی امید میں کی جاتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ واٹیکن ریڈیو کا ہندی پرسارن سماپت ہوا۔ نمسکار۔

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, मानव का एक दूसरे के प्रति चिंता हमारे मानवीय होने के गुण को अभिव्यक्त करता है। अपनी सजीव मानवता के कारण हम एक दूसरे के संग उनके दुख सुख अच्छी बुरी परिस्थितियों में सहभागी होती और जरूरत के अनुरूप अपने कार्यों को करते हैं, जिससे हम एक दूसरे के निकट रहने वालों की भलाई करते हों। हमारी मानवीय संवेदनशीलता हमें ईश्वर के सारे श्रेष्ठ प्राणियों में एक अलग पहचान प्रदान करती है, जहां हम सारे सृष्टि के सिरमौर बनते हैं। श्रोताओं, वर्ष के 23वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए सभी पाठों में हम मानवीय जीवन के सार की अभिव्यक्ति को पाते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने में इस बात की थाह लें कि हम अपने मानवीय होने की अभिव्यक्ति को दूसरों के संग किस रूप में व्यक्त करते हैं। क्या हम में व्याप्त ईश्वर से मिली अच्छाइयां दूसरों की अच्छाई और भलाई में व्यक्त होती हैं? क्या हम अपने मानवीय प्रकृति के अनुरूप दूसरों के हित का ख्याल रखते हुए अपने दैनिक जीवन के कार्यों का निष्पादन करते हैं?
1: यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने भाई को बचा लिया। यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता तो और दो एक व्यक्तियों को साथ ले जाओ, ताकि दो या तीन गवाहों के सहारे सब कुछ प्रमाणित हो जाए। यदि वह उनकी भी नहीं सुनता तो कलीसिया को बता दो, और यदि वह कलीसिया की भी नहीं सुनता तो उसे गैर यहूदी और नाकेदार समझो। मैं तुमसे कह देता हूँ, तुम लोग पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसको अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। मैं तुमसे यह कह देता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में से दो व्यक्ति एकमत होकर कुछ भी मांगेंगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गिक पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा, क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ।
0: श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें अपने जीवन में हृदय के अपने भंडार से अच्छी चीजें निकाल कर दूसरों को देने में मदद करे, जिससे हमारे द्वारा ईश्वरीय जीवन का संचार जरूरतमंद लोगों के लिए हो सके। श्रोताओं, नबी एजिकियल के ग्रंथ से लिए गए आज के पहले पाठ में ईश्वर नबी को इसराइल के घर आने हेतु एक पहरेदार नियुक्त करते हैं। एक पहरेदार का कार्य लोगों को सब समय सतर्क और सजग रहने का आह्वान करना है। वह उन्हें अनहोनियों के प्रति पहले से तैयार रहने को घोषित करता है। ईश्वर नबी को एक पहरेदार स्वरूप नियुक्त करते हैं, जिससे वे चुनी हुई प्रजा को पापों और बुराइयों से बचे रहने का आह्वान करें, उन्हें चुनौती प्रदान करें, क्योंकि पाप और बुराई हमें ईश्वर से दूर अनंत मृत्यु की ओर अग्रसर करती है। यहां हम ईश्वर के प्रति नबी के निष्ठावान बने रहने की बात सुनते हैं, जो ईश्वर के प्रति हमारी निष्ठा पर भी चिंतन करने की चुनौती प्रदान करता है। ईश्वर ने हमें जीवन प्रदान करते हुए अपने मुक्तिदायी कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने हमें नबी के रूप में नियुक्त किया है, जिससे हम पाप और मृत्यु से अपने को मिले मुक्तिदायी जीवन को दूसरों के संग साझा करें। हम दूसरों को पाप में गिरने से बचाएं, क्योंकि हम स्वयं पाप और उसके कारण होने वाली मृत्यु से बचाए गए हैं। श्रोताओं, यह हमें रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिए गए आज के दूसरे पाठ से संयुक्त करता है, जहां हम भ्रातृत्वमय प्रेम के ऋण की चर्चा सुनते हैं। यह हमें दूसरों को अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम करने की बात कहता है। मानवीय प्रेम एक तरह से ऋण की भांति है, जिसे हम दूसरों के लिए देते हैं। यह अपने को बिना सूद की चाह रखे दूसरों के लिए व्यय करना है, दूसरों के हित का ख्याल रखते हुए अपने को देना, जिससे पाने वाले अपने जीवन में आनंद और खुशी का अनुभव करें, जो उनके लिए जीवन में सर्वांगिक विकास का कारण बने। श्रोताओं, आज का सुसमाचार जिसका श्रवण हमने किया, हमें पड़ोसी प्रेम के एक दूसरे महत्वपूर्ण आयाम को गहरी रूप में व्यक्त करता है, जिसे हम भ्रातृत्व में सुधार स्वरूप पाते हैं। किसी के लिए हमारा यह भ्रातृत्व में सुधार हमारे लिए उस व्यक्ति के लिए एक प्रेम की निशानी है, जो हमारे हृदय में उसके प्रति एक नेक चाह को व्यक्त करता है। लेकिन यह बहुधा आज की परिस्थिति में गलत मनोभावों से लिया जाता है, जिसके फलस्वरूप सुधार की जगह हम एक बिगाड़ को पाते हैं। यही कारण है कि हम अपने अजीज मित्रों के संबंध में भी केवल मीठी मीठी बातें तक ही अपने को सीमित कर लेते हैं, जबकि उनकी कमजोरियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराना हमारे लिए कठिन और भयजनक लगता है। आज के सुसमाचार में यीशु हमें अपने समाज के ताने बाने को सुरक्षित और व्यवस्थित रखने की चुनौती प्रस्तुत करते हैं। गलती और कोई अपराध कोई भी व्यक्ति से किसी भी परिस्थिति में सहज हो सकता है, जो हमारे लिए मानवीय कमजोरी को व्यक्त करता है। लेकिन हम उस गलती या अपराध के सुधार हेतु किस तरह की पहल अपनी ओर से करते हैं? यदि हम अपने भाई बहनों की गलतियों के सुधार हेतु अपनी ओर से पहल नहीं करते, तो उनकी गलतियों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है और हम उनके लिए जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। श्रोताओं, आज यीशु हमें अपने बीच में होने वाली गलतियों के सुधार हेतु तीन स्तर के सुझाव प्रस्तुत करते हैं। पहला, गलती करने वाले को व्यक्तिगत रूप में समझाना। दूसरा, उसे दो या तीन के संग मिलकर गलतियों को देखने और अपने में सुधार लाने को मदद करना, और सुधार ना होने पर तीसरे स्तर में उसे कलीसिया के सामने प्रस्तुत करना और अंततः सामाजिक रूप में अपराधी के रूप में देखना। श्रोताओं, आज के प्रभु वचन का सार, ईश्वरीय संतानों के रूप में हमें एक दूसरे की चिंता करते हुए प्रेम के सूत्र में सदैव बंधे रहने का आह्वान करता है। यह हमें अपने समुदाय में प्रेम और एकता में भ्रातृत्वपूर्ण संबंध बनाए रखने का संदेश देता है, जिसके ताने बाने को सुरक्षित रखने हेतु स्वयं उन्होंने मानव बनना स्वीकार किया। आइए हम माता मरियम से निवेदन करें कि वे हमें अपने परिवारों और समुदायों को सुरक्षित रखने में मदद करना सिखाएं, जहां हम दूसरों की सच्ची चिंता करते हुए ख्रिस्तीय प्रेम में एक दूसरे के संग सदैव संयुक्त रह सकें।

0: आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत समाचार। पोप लियो 14वें ने शनिवार को वैटिकन में एकांत मठवासी धर्म बहनों का स्वागत किया और उनकी उपस्थिति को ईश्वर की कृपा का एक चमकदार साक्ष्य बतलाया, जो मानव के दिल में उनके चेहरे को खोजने और उन पर चिंतन करने की इच्छा उत्पन्न करता है। पौत्रतम संस्कार की अनवरत आराधना की धर्म बहनें, जिन्हें सैक्रमेंटाइन धर्म बहनें भी कहा जाता है, उनके धर्म संघ की स्थापना 1807 ईस्वी में रोम में शरीर धारण की धन्या मरिया मगदलेना के द्वारा हुई थी। एकांत मठवासी धर्म बहनें दिन और रात पौत्रतम संस्कार की आराधना के लिए समर्पित हैं। पोप से मुलाकात करने वाली धर्म बहनें पौत्र आत्मा के संघ के सदस्य हैं। यह लगभग 30 मठों का एक दल है, जिनमें से अधिकांश मेक्सिको में है। धर्म बहने पौत्र आत्मा के संघ की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ पर इन दिनों इटली की तीर्थ यात्रा पर हैं। पोप ने कहा, ईश्वर के चेहरे की यह निरंतर खोज जो मठवासी जीवन की विशेषता है, आपकी बुलाहट में एक सूक्ष्म फर्क पर आधारित है। यह पूरी तरह ईश्वर की निरंतर एवं मौन आराधना के लिए समर्पित जीवन है, जो रोटी बन गए और जो हमें एक शरीर बनाने के लिए वेदी के बलिदान में उनके साथ एक होने के लिए आमंत्रित करते हैं। जैसा कि संत अगस्तीन अपने कलीसिया के नए सदस्यों को समझाते हैं, वेदी पर रोटी और दाखरस मसीह में विश्वासियों की एकता का संस्कार है। संत पापा ने मठवासी धर्म बहनों से कहा कि वे अपनी संस्थापिका द्वारा प्राप्त कैरिज्म के अनुरूप प्रार्थना और काम के धागों से मठ में यूखारिस्ते आराधना और भाईचारा के साथ मिलकर काम करने के लिए बुलाए गए हैं। पौत्र आत्मा के संघ की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ पर पोप ने कहा, यह कृपा का समय जिसको वे अनंत शहर में और उन जगहों पर तीर्थयात्रियों के रूप में अनुभव कर रहे हैं जहां धम्म संघ की शुरुआत हुई थी, उन्हें वे नवीनीकृत करें और मजबूत बनाएं। संत पापा ने उन्हें संस्थापिका ख्रिस्त के शरीर धारण की धन्या मरिया मगदलेना के आदर्शों पर चलने का प्रोत्साहन दिया, ताकि वे अपने समर्पण को नवीनीकृत आशा और पौत्रता की चाह के साथ जीते रहें। उन्होंने कहा, याद रखें, सुसमाचार के पुराने और हरदम नवीन रहने वाले प्रज्ञा के प्रति निष्ठा ही उन लोगों के लिए सबसे अच्छा रास्ता है जो पौत्र आत्मा के मार्गदर्शन में खुद को ईश्वर और पड़ोसी से प्यार करने के लिए समर्पित करते हैं। अंत में संत पापा ने उन्हें ग्वादालूपे की माता मरियम की सुरक्षा में सुपोर्द किया तथा उन पर प्रभु से आशीर्वाद की कामना की। विद्वान, राजनेता, उद्यमी, धार्मिक नेता, कार्यकर्ता और युवा इंडोनेशिया में एकत्रित हैं ताकि हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक पर चिंतन कर सकें, और यह चुनौती है कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मानव प्रतिष्ठा, भाईचारे और शांति की सेवा में कैसे लगाया जा सके। स्कोलास्टिक्स, जो वैश्विक शैक्षिक नेटवर्क और मिलकर काम करने की जगहें हैं, जो स्कोलास और करंतिस आंदोलन द्वारा यूनिवर्सिटी एवं रिसर्चर को जोड़ती हैं, इस हफ्ते इंडोनेशिया में अपने 11वीं इंटरनेशनल कांग्रेस की मेजबानी कर रही हैं। 4 से 6 सितंबर तक चलने वाली 3 दिनों की कांग्रेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मानव संवेदना के सवाल पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
1: जिबूती के धर्माध्यक्ष और सोमालिया के प्रेरितिक प्रशासक धर्माध्यक्ष जमाल डेब्स ने पवित्र भूमि में फिलिस्तीनियों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राजनयिक दबाव बनाने की अपील की, ताकि वे सम्मान, आजादी और सुरक्षा के साथ अपने देश में रह सकें। अरब इलाकों के लैटिन धर्माध्यक्षों के साथ शुक्रवार 4 सितंबर को संत पापा लियो 14वें से मिलने के बाद रोम में वाटिकन न्यूज से बातें करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि डर और हिंसा फिलिस्तीनियों को उस जमीन को छोड़ने पर मजबूर कर रही है।

gatte